जय हो ईष्ट भूमि मेरी, जय लगो लगो तुम घूं की दुपड़ी, जगरा बाजी चंड मुंड नच